सब छोड़ती मैल छोड़ कमाई, सब कीमत मैल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तल बढ़ियाई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखां कियां वढ़ियाईया।

0: अपनी धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Speak Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

के भाई प्रभु पति दे बिछोड़े विच एक पल पी एक दिन पी मेनू इउं जापदा है जिवें ए दिन कदे मुकदा ही नहीं। मेरे मन विच बड़ी तांग लगी रहिंदी है कि मेनू कोई अजिहा संत मिल पे जेड़ा मेनू प्रभु पति

दिन की एक कड़ी भी प्रभु पति के विछोड़े विच मैनू कई दिना बराबर जापदी है। प्रभु पति के मिलाप तो बिना मेरा मन तीर्ज नहीं फड़दा। मैं हर वेले सोचती रहती हाँ कि प्यारे ने किवें मिले।

इसलिए हे प्रभु दिन की एक कड़ी है प्रभु पति दे विछोड़े विच मैनू कई दिनां बराबर जागती है प्रभु पति दे मिलाप के दिन मेरा मन तीर्थ नहीं करता मैं हर वेले सोचती रहती हूँ कि प्यारे में किमें मिला।

गुरु इतिहास खोजी जनो, आप जानते हो कि माता भानी जी गुरु नानक साहिब जी की तीसरी जोत गुरु अमरदास साहिब जी की सपुत्री सन। गुरु अर्जन साहिब जी का बचपन अपने नानके घर गोइंदवाल साहिब ही बीतया। आप जी पहले गुरु सन जिन्हों का बचपन सतगुरु अमरदास साहिब जी की निगरानी अथवा सिखी वातावरण प्रफुल्लित होया।

आप जी ने गुरमुखी विद्या बाबा बुद्धा जी पासों प्राप्त कीती। हर प्रकार दी धार्मिक आत्मिक अति दुनियावी सदाचारक विद्या 5 साल दी आयु विच ही आरंभ हो चुकी सी। पिछले सतगुरां दी बाणी गुरु मर्यादा भी गुरु तीसरे पातशाह जी दी हाजरी विच ही प्राप्त कीती। तदे ही पट कलश हर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 1407 उपर अंकित सवैये अंदर लिखते हैं, गुरु रामदास कर क्यों परगासा, सगल मनोरथ पूरी आसा, तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, कल जोड़ कर सुजस विखाणियो। भाव हे गुरु अर्जन, कल कवि हाथ जोड़ के आप जी दी सिफत उचारदा है। आपने गुरु रामदास जी दे घर जन्म लिया, उन्हां दे सारे मनोरथ ते आसां पूरियां होईयां। जन्म तो ही आपने गुरु दी मत द्वारा ब्रह्म नूं पछाणिया, भाव परमात्मा नाल डूंगी सांझ पाई हुई है।

प्यारे श्रोता जन, आप जी ने गुरु अर्जन साहिब जी दी परवरिश दे समय दिया कई साखियां सुनिया जा पढ़िया हन, जो दुनियावी पक्षों असा अनाड़ी जीवां नू समझाउण लई एक नमूना हन। अपने इस विचार नू नखेड़न लई आप जी दे ध्यान गुजरे कुछ इतिहासिक तथ्य पेश करना चाहते हैं। एक बार बालक गुरु अर्जन साहिब जी खेड़दे खेड़दे तीसरी जोत गुरु अमरदास साहिब जी दे मंजे दे पावे नू फड़ के हलूणा देण लगे, तां सुभावक ही सतगुरु अमरदास साहिब जी ने ए वचन आख्या, ए कौन है वड्डा पुरख जिसने असाडी मंजी हिला दित्ती है। इस वार्ता दा जिक्र बंसावली नामा दे पन्ना 34 उपर लिखा मिलदा है। चिंतित होके शायद गुरु पिता जी नाराज हो गए हन। बीबी भानी ने बेनती कीती, हे पिता सतगुरु जी, यह है सुता सुत दोहता। तद सतगुरु जी ने वचन किया, ए दोहता बाणी का बोहिथा। इसका वर्णन सूरज प्रकाश दे पन्ना 180 ते सोडी तेजा सिंह जी इस तरह करते हैं, भारी जग गुर जग में बिदते हैं, बाणी के बोहित बढ़ हबे हैं।

गुरु जी ने अपने छोटे पुत्र नूं लाहौर जाण दा हुक्म कीता अते आख्या, असाडे हुक्म तों बिना उत्थों वापस नहीं आउणा, बल्कि अपनी धर्मशाला विच निवास रख के संगतां नूं गुरमत दा उपदेश दृढ़ करवाउंदे रहना है।

0: अगले दिन पिरथी चंद सतगुरु पिता जी पास गुरियाई दी बाबत गलबात करन लगा। बड़ी चर्चा कीती, वाद विवाद कीता, पर गुरु पिता ने समझाया कि झगड़ा ना कर, क्योंकि गुरियाई खसम दी दात है, मालिक दी जोत अते रब्बी अजमत है। भाई गुरदास जी ने इस प्रथा लिखा है, दात जोत खसमे बड़ियाई।
1: श्रोता जन, हंकारी अते मूर्ख मन कद समझदा है। पिरथिये ने हठ धर्मी वरतीरा अपनाई रखिया अते एही गल आखी जांदा सी कि मैं बड़ा हां, गुरगद्दी मेरा हक है, मैं अर्जन देव नु गुरगद्दी ते नहीं बैठन देवांगा।
0: गुरगद्दी दी प्राप्ति पिछे घरेलू वाद विवाद नेता प्रति होर बढ़दा ही गया। सतगुरु जी ने वाद विवाद दे बावजूद अकाल पुरख दी आज्ञा दे अनुसार गुरगद्दी दे कावल सिर्फ सब तो छोटे साहिबजादा गुरु अर्जन साहिब जी नु ही समझिया। गुरगद्दी समागम गोइंदवाल साहिब

इस शब्द की तुलना अंग्रेजी दे शब्द हिज एक्सीलेंसी नाल भी किया जाता है। उदाहरण वजो कनेडा दे गवर्नर जनरल नू हिज जां हर एक्सीलेंसी आख के संबोधन किया जाता है। प्यारे श्रोता जन, जब तुसी हरमंदर साहिब दे दर्शनां नू जांदे हो तुसी नोट कीता होवेगा दरबार साहिब अंदर जाण लई इक पुल उपर दी लंघना पैंदा है। तुसी भावे इस बारे कदे विचारिया ना होवे पर इस पिछे इक वड्डा गुरमत भेद छुपिया होया है। इस्लामी अकीदे मुताबिक दोजक दे उपर इक एहो जिहा पुल है जो बहुत बरीक ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਧਾਰਨੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਕ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਲ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਾਵ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

सतगुरु अर्जन साहिब जी ने अपने सारे 43 साल जीवन अंदर एहो जिहे बहुत चखड़ चले हैं। असी अज अपने करोगी जीवन विचों ही उन्हां दे दर्शन करने हैं। हमेशा याद रखने की लोड़ है कि बाबा पिठी चंद की विरोधता सतगुरु जी नूं अपने निशाने तो कदी भी दूर ना ले जा सकी। गुरु जी ने बड़ी गंभीरता विखाई, रता पर भी मत्थे वट नहीं पाया। सतगुरु जी ने दुनिया के राक्षस बल के मुकाबले परमात्मा का आसरा लिया।

श्रोता जन, अंग्रेजी की कहावत है, टू एक्सेप्ट अर्थ ऑफ एज वी आर इज टू वैल्यू अर इम्परफेक्शन एज मच एज परफेक्शन। भाव अपनी कमालियत प्रवीणता जां सिद्धि दे नाल नाल अपनी कांत भाव कमजोरी नूं कबूलना ही करते कादर दियां कदरां कीमतां दी सार लैणा आख्या।

क्षमा करो कोई ओ क्षमा करो कोई परी माने नु हटावे ना क्षमा करो कोई परी माने

तदा चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तन तन के श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी हजूरी वे सब संगता सा माई पाई एकत्र होए आ। आओ आपा हर रोज दे तरह ए ताडी राग दे रहे इतिहास जेड़ा सुन लगे आ। आपा लड़ीवार इतिहास गुरु नानक साहब महाराज पातशाह दा सुन रहे आ। सतगुरु नो बंदी बनाया गया ते महाराज नो अपने घर विच रख के कोठड़ी विच रख के कहंदे इस नो कैदी बना के दूसरे दिन ए रोहेला पठान जेड़ा ए वेचण वास्ते सतगुरु नो मंडी विच ले गया। वेखो सतगुरु ने साडी खातर जाके महाराज मंडी विच विके हन, क्योंकि आज जेड़े होर पुरुष हन बीबियां भैणां तियां बच्चे आ जेड़े बंदिया दी मंडी लगदी है ते बंदिया दी मंडी लगना सतगुरु हटाउण लगे है। अपने ढंग दे नाल सतगुरु ने उपदेश जिथे जिथे भी गए सतगुरु ने ए उपदेश है जेड़ा सारा संगतां नूं कीता। रहेला पठान से जेड़ा इहदे घर वाले कहंदे सी ए तुसी काम ना करो, ए बच्चा न्याणा मां पिता तो विछड़िया होया है ते तुसी इस नूं जाके वेचण लगे हो। कहंदा मैनूं रोक ना, तू वेखी सी इहदी तां कीमती बड़ी पवेगी, अमीर बन जावांगे आपां, जो कुछ तू मंगेंगे ओही मैं कुछ लिया के देऊंगा। लो इस नूं सतगुरु धन गुरु नानक साहिब महाराज पातशाह नूं जिथे मंडी लगदी सी उच्चे थां थड़ा जिहा बनाया हो

सतगुरु दे कीमत से जड़े कहले दो अरबी घोड़े से जड़े उस वक्त बड़िया कीमती होने इन्नी कीमत चढ़ गए धन गुरु नानक साहब महाराज पातशाह कहले एक सेठ ने खरीद ले उस दे मन विच ए सी वे ए बरदा जेड़ा बच्चा न्याणा जदों जवान होने उस वेले ताई इस बच्चा करके ने कम भी बहुत करया करना ए मन विच धार के धन गुरु नानक साहब महाराज पातशाह नू इसने खरीद लिया ते करे लै गया करे ले जाके कहन लग्या आ सुनो काका तू मेरी गल तेनू मैं बहुत महंगा खरीद के लिया

सैकड़े शहीदां मरीदां दे सिदक नूं सजदे करदा होया गुरु दा एक सिदकवान सिख सतगुरु सच्चे पातशाह दे चरणां विच कुछ इस तरह अरदास बेनती करता है।

संगत मिल जाएगी। विच संगत हर प्रभ वसा जीव दिसदा ही नहीं, सुन के दर्शन करने। गुरु नानक साहब बैठे कोल मरदाना कोल पाला लै मरदानिया बाजार बाब। कहिंदे मरदाने की रबाब इन्नी पावर सी जंगलों के पंछी भी मोह ले जाते, बाबर वर्गे मोह ले। जेड़ा बाबर कहिंदा सी कि राग नाद बजण ही नहीं देना, जेड़ा बाबर कहिंदा सी राग बंद कर दो, गुरु नानक साहब वो बार अगे जाके वो महिला के गेट अगे ड्यूटी अगे जाके कहिंदे मरदानिया इत्थे राग गा बह। इत्थे मरदाना कहना महाराज जी आप क्यों न्याई मौत मरना है, फस जाएंगे आप चलीए। मरदाना घबरा गया। सतगुरु कहने मरदानिया रबाब बजा। कहना जो तो दूजिया फकीर दिया रबाबा संतोख दिया आप भी संतोख दो की लोड़ पई है। गुरु नानक साहब ने आख्या नहीं मरदानिया अपने कोल कोई तो चीज है गा के पाना गा के कोई साधना नहीं शरीर तपाउणा नहीं कोई सवाल नहीं सवाह नहीं मिली कोई शरीर से राग नहीं मिली कोई जल धारे नहीं किते कोई धूणिया नहीं तापियां गा के पाया गुरु नानक ने गा के मरदानिया एक ही तो चीज अपने को बाजार बाल। मरदाना कहना महाराज मारे जावांगे अगे जेड़ा भी वजाउंदा फड़ के लै जांदे ने जेल च सिट दिंदे आ चक्कियां पीणियां पैंदियां ओ मरदानिया उन्हां दी रबाब विच ते तेरी रबाब विच बड़ा फर्क है। तू ना डर क्यों महाराज किसे किसे दे साज विचों उन्हां दा हुनर बोल मरदानिया एक कोई साज बजाउंदा है अपने हुनर नाल पर जेड़ी तेरी रबाब वजदी है ये हुनर नहीं ये अलाही राज है।

बड़ा गुमान करता है मनुख देही का धन दौलत का महल माड़िया का सुंदर रूप का पर सतगुरु जी की बाणी सतगुरु जी के अमृत बोल कहते ने चले चलन हार विचारा ले मनो गंढेंदियां छे मां तुड़ंदियां हिक खिनो जिस देही दा जिस धन दौलत दा जिस महल माड़िया दा तू हंकार करदा है इस देही दी इस तन दी मुनियाद कुछ भी नहीं है। सारे नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु सतगुरु कह रहे हैं।

अपने शरीर से तरह तरह दी सुगंधियां लाता है। इस शरीर को सुंदर बनाने लिए, सुंदर रखवाने लिए खुशबूदार चीजा तरह तरह दी सुगंधियां शरीर से लाता है। सतगुरु कहते ने कोई शरीर तेरे नाल पैदा हो इतों तक कि उस शरीर ने भी तेरा साथ नहीं देना, साथ छड़ देना है। क्योंकि जीवन हर एक नूं मिलिया है, पर एक ख्याल करियो मिलिया होया जीवन, मिले हुए जीवन जीवन की विधि तरकीब किसे किसे नूं मिली। जीवन होर चीज है, जीवन दी जुगत होर चीज है। जरूरी नहीं हर किसी नूं जीना आंदा होवे। बहुत लोग ऐसे ने जिन्हां नूं जीवन मिल जाता है लेकिन जीना नहीं आंदा, ते वो समझते भी ने कि सानू जीवन मिलिया है, एहसास भी है जीवन जीव रहे हाँ, पर एक ख्याल करे हर किसी नूं जीना नहीं आ रहा। मिल जाना होर चीज है लेकिन जीवन जीना होर चीज है। एग्जाम्पल दे तौर ते कार होर चीज है, ड्राइविंग कर लेना होर चीज है, कंप्यूटर नूं खरीद लेना होर गल है, प्रेत करना होर गल है, रहमत करन सतगुरु सानू जीवन जीना आ जाए, जीवन दी जुग आ जाए, जीवन जीवन दी जात आ जाए, ये जीवन सफल हो जाएगा। सतगुरु जी दी बाणी जिथे समुची मानवता नू, समुचे संसार नू, समुची लुकाई नू, हर एक नू सर्व सांझी वालता दा उपदेश दे रही है। उत्थे बड़ा सुंदर हर थां ते हर शब्द विच, हर उपदेश विच जीवन जीवन दी जात है। जिसनू जीवन जीना, जीवन दी जुगत आ जाती है, वो इंसान वो जीव सफल होके जाते ने। गुरु रहमत करन ये संसार आउन जाने, जिसने जन्म ले लिया है उसने एक दिन मरना है। अज का मनुख, अज का जीव जिन्ने यतन कर रहा है, जिन्निया कोशिशां कर रहा है, जिन्ने यतन करता है, उसके पीछे होता है कि मैनू मौत ना आ जाए। पर मौत एक अटल सच्चाई है। गुरु रहमत करन सानू जिहड़ा जीवन मिले, जीवन की जात आ जाए, जीवन जीना आ जाए, यह जीवन सफल हो जाएगा। आओ सतगुरु जी के उपदेशों से जुड़िए। सतगुरु की कह रहे हैं।

लोभ मोहे मगन अपराधी करनहार की सेवना साधी पतत पावन प्रभ नाम तुम्हारी राख ले हो मोहे निर्गुण आरी रहाऊ तू दाता प्रभ अंतर जामी काची दे मनुख अभमानी स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख भंजन जग जीवन हर राया सगल त्याग नानक सरनाया सूही महला पंजवा देखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही सो किस कार जित छुटे है परानी हर हर नाम जप अमृत।

का भांडा, हथ कुचील मिलै जम डांडा, काम क्रोध लोभ मोह बादा, महागर्त मह निगरत जाता, नानक की अरदास सुनीजै, डूबत पाहन प्रभ मेरे लीजै, सूही महला पंजवा, जीवत मरै बुझै प्रभ सोए, तिस जन कर्म प्राप्त होए, सुन साजन यों दुत्तर तरियै, मिल साधु हर नाम उच्चरियै रहाउ, एक बिना दूजा नहीं जानै, घट घट अंतर पार ब्रह्म पछानै, जो किश करै सोई भल मानै, आद अंत की कीमत जानै, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जां कै हिरदै वसै मरारी, सूही महला पंजवां, गुर परमेश्वर करनै हार, सगल सिष्ट को दे आधार, गुर के चरण कमल मन त्याए, दुख दर्द इस तन ते जाए रहाउ, भव जल डूबत सतगुर काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांडै, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवै शांत, सतगुर की रेन वड भागी पावै, नानक गुरु को सद बल जावै, सूही महला पंजवा, गुरे अपने ऊपर बल जाइयै, आठ पैर हर हर जस गाइयै, सिमरो सो कब अपना स्वामी, सगल कथा का अंतर जामी रहाउ, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत, संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगै संतर वाला, सूई महला पंजवां, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा, एह बेनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम करे अपने चेरे रहाउ, अपनी चरण राख प्रभ दाते, गुर प्रसाद किन विरलै जाते, सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल वस्त है मेरे चीता, नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूर्ण गुणतास, सूही महला पंजवा, मीत साजन सुत बंधप पाई, जत कत पेखो हर संग सहाई, जत मेरी पत मेरी धन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम रहाउ, पार ब्रह्म जप तहर सलाह, कोट आवद तिस बेदत नाही, हर चरण सरण गर कोट हमारे, काल कंटक जम तिस ना बदारै, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मरारी, सूही महला पंजवां, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, आनंद बनोद मंगल सुखताहा, चल सकिए प्रभ रावण जाहा, साध जना की चरणी पाहा रहाउ, कर बेनती जन तूर बछाहा, जन्म जन्म के किल विखलाहा, मन तन प्राण जियो अरपाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करहु उत्साहा, नानक दास हर सरन समाहा, सूई महला पंजवा, बैकुंठ नगर जहां संतवासा, प्रभ चरण कमल रिद माही निवासा, सुन मन तन तुझ सुख दिखलामू, हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचामूह रहाउ, अमृत नाम पुंच मन माही, आचर्ज साध ताके बरनी ना जाही, लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी, पार ब्रह्म की शरण जन ताकी, जन्म जन्म के भय मोह निवारी, नानक दास प्रभ कृपा तारी, सूही महला पंजवा, अनक बींग दास के पर हरिया, कर कृपा प्रभ अपना करिया, तुम्हें छड़ाए लियो जन अपना, उर्ज परियो जाल जग सुपना रहाउ, पर्वत दुख महा बिकराला, किन मैं दूर किए दयाला,
ठोग रोग विपत अत पारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो लड़ लाई

राम रमत संतन सुख माना, नानक दीवन हार सुजाना, सूही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्ट ना तारत, मिथ्या मोह बंद है नित पारच, माधवे पाज दिन नित रहनी, जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ, करत विकार दो कर चारत, राम रतन रिद तिल नहीं तारत, परन पोखण संग औद बेहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी, सरन समरात अगोचर स्वामी, उधर नानक प्रभ अंतर जामी, सूही महला पंजवा, साध संग तरै भय सागर, हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिन से, गुरपूरे मिल पाप तुजायन रहाउ, जीवन पदवी हर का नाउ, मन तन निर्मल साच सुआउ, आठ पहर पार ब्रह्म ते आई है, पूर्व लिखित होए ता पाई है, सरन पए जप दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला, सूही महला पंजवा।

पंजवा दर्शन को लोचे सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहा श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत किस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परवाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष ना दीजै किरत पवाई सुन साजन संत जन पाई चरण सरन नानक गत पाई राग सूही महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पली सुहावी सापरी जा मह गुन गाई कित ही कामना कौल हर जित हर बिसराय रहाओ अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चेते आए जल जाओ एहो बडपना माया लपटाए पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना कितै काज जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग एक कै ओहो शोभा पाई पाट पटंबर बिरथिया जेह रच लोभाई सब किस तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराई सास सास सिमरत रहा नानक दान पाई सूही महला पंजवा हर का संत प्राण धन तिसका पनिहारा भाई मीत सुत सगल ते जी हूं ते प्यारा रहाउ केसा का कर बीजना संत चौर टलावो शीस निहारो चरण तल तूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई ताज अवमान सरनी परो हर गुण निध पाई अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार चितवो मन आशा करूं।

छोड़ जाहे जो सगल कौ फिर लपटाओ। करहो कृपा करुणापति तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ। राग सूही महला पंजवा घर पंजवा पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना। जप मन गोविंद एक है अवर नहीं को लेख है। संत लाग मन है शाड दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण धरिया अनक कोठरिया। भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न करिया विच मन कोट वरिया। निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया। नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया। बहु बिद फिरिया पर को हिरिया बिखना किरिया। अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया। दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया। सूही महला पंजवा रास मंडल कीनो आखारा। सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहु विद रूप रंग अपारा पेखै खुशी भोग नहीं हारा। सब रस लैत बस्त निरारा वर्ण चिहन नाही मुख ना मासारा। कहन ना जाई खेल तुहारा नानक रेन संत चरनारा। सूही महला पंजवा तो मैं आया सरनी आया। पुरुषे आया कृपा आया ज्यो पावे त्यों राखो स्वामी। मार्ग गुरह पठाया रहाओ महादुत्तर माया। जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया। करो धर्म राया गृह अंध कुपाया। पावक सगराया गही ओट सधाया। नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया। राग सूही महला पंजवा घर छेवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेनंतिया। मिले नाम आधारा तुथा सच्चा पातशाह। ताप गया संसारा

नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरना कौ बलिहारा राग सूही महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाही जिसनो हो ही दयाला साई भगत जो तुद भावे तू सर्व जिया प्रतपाला मेरे राम राये संता टेक तुम्हारी जो तुद भावे सो परवान मन तन तू है अधारी रहाल तू दयाल कृपाल कृपा निध मनसा पूर्ण हारा भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा तू अथाह अपार अत ऊंचा।

तिन भी अंत ना पायो तेरा, लाए थके बेपूता, सहज सुख आनंद नाम रस, हर संती मंगल गाया, सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक, ता मन तन हर हर ध्याया, सूही महला पंजवां, कर्म धर्म पाखंड जो दिसह, तिन जम जागाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावहु करते का, निमक सिमरत जित छूटै, संतो हो सागर पार उतरियै, जे को बचन कमावै संतन का, सो गुर प्रसादी तरियै रहाउ, कोट तीरथ मज्जन इशनाना, जिस कल मह मैल प्रीजै, साध संग जो हर गुण गावै, सो निर्मल कर लीजै, वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़िया मुक्त ना हुई, एक अखर जो गुरमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई, खत्री ब्राह्मण सूद वैस, अपदेश चहो वरना को सांझा, गुरमुख नाम जपै, उदरै सो कल मह, कट कट नानक माझा, सूही महला पंजवां, जो किस करै सोई प्रभ मान है, वे राम नाम रंग राते, तिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभ के चरण पराते, मेरे राम हर संता जेवड ना कोई, भगता बण आई प्रभ अपने स्यों, जल थल महियल सोई रहाउ, कोट अपराधी संत संग उदर है, जम ता कै नेड़ ना आवै, जन्म जन्म का बिछड़िया हुवै, तिन हर स्यों आन मिलावै, माया मोह परम पहु काटै, संत शरण जो आवै, जेहा मनोरथ कर आराधी, सो संतन ते पावै, जन की महिमा केतक बरनौ, जो प्रभ अपने पाणी, कहो नानक जिन सतगुर।

जब कस ना सीओ तब क्या करता, कवन कर्म कर आया, अपना खेल आप कर देखे, ठाकुर रचन रचाया, मेरे राम राये मुझते कछु ना हुई, आपे करता आप कराई, सर्व निरंतर सोई रहाओ, गणती गणी ना छूटे कतहूं, काकी देह त्याणी, कृपा करहु प्रभ करने हारी, तेरी बख्श निराली, जी जंत सब तेरे कीते, कट कट तू ही त्याईए, तेरी गत मित तू है जान है, कुदरत कीम ना पाईए, निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी, कर्म धर्म नहीं जाना, दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा भाणा, सूही महला पंजवा, भाग थड़े हर संत तुम्हारे, जिन कर धन हर नामा, परवान गणी से एह आए, सफल तिना के कामा, मेरे राम हर जन कै हो।

सुहावी जित तुमरै द्वारै आया नानक कहो प्रभ पये कृपाला सतगुर पूरा पाया सूही महला पंजवा तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरह सो मर जाए दयाल होवे है जिस ऊपर करते सो तुद सदा त्याए मेरे साहेब तू मैं मान निमाणी अरदास करी प्रभ अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी रहाओ चरण धूड़ तेरे जन की होवा तेरे दर्शन कहो बल जाई अमृत बचन हृदय उर धारी तो कृपा ते संग पाई अंतर की गत तुद पह सारी तुद जेवड़े अवर ना कोई जिसनो लाए लह सो लागे भगत तुहारा।

सुख को पौ किस नाही, जम नहीं आवे मेरे रहाऊ। जो तेरा रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुर का दिलासा। नाम त्याइन सुख फल पाइन, आठ पहर आराध है। तेरी शरण तेरे परवास है, पांच दुष्ट लै साद है। ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सत

मुक्त पदार्थ हर रस जाके आवण जान रहे गुर राखे। सरवर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सहज समाए। सरवर मह हंस हंस मह सागर अकथ कथा गुर बचनी आदर। सुन मंडल एक

जात सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कौ जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल ना लागे, गुरु कै शब्द भरम पौ पागे। सूरत मूरत

भाव अंतर्गत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरी मनाही तोई गुण गुण कीते भगत न होए। स्वास्थ्य आथ बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ गवन सुबेड़ा भक्त गवन गवन सित गवन वार गवन से रुचि मां गवन जित वाकार वेल ना पाईया पंडती जे होगा लेख पुराण भगत ना पायो काजिया जे लिखन लेख पुराण सित बार ना जोगी जाने रुत मान कोई जा करता सरठी कौ साजे आपे जाने सोई किव करे अखा किव सलाई क्यों परनी किव जाना नानक आखण सब को आखे एक दूत सियाणा वड्डा साहिब वड्डे वड्डी नाही कीता जा का होवै नानक जी को आपो जाने अगे गया ना तू है पाताल पाताल लख आगासा आगास उड़ कोड़ भाल सके।

नमो शाशांग नमो रूप रूपे नमो दान दानी नमो मान माने नमो रोग रोगी नमा संग स्नाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो यंत्र यंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे रूपे समाज करने वासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद करता अदूर दंगा गंगो हरता परंग परम परमेश्वरंग पुरुषपालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग अशेदी अपेदी नामंग कामंग समस्त ब्राजी समस्ता सदानंग तेरा जोर जाज भीषांग जले हैं तले हैं पीता भे हैं प्रभु अजुआ देश है बेस है पुजंग पर याद शांग जले हैं थले हैं पीता भे हैं प्रभु अजुआ देश है बेस है पुजंग पर याद शांग अगाधे अबाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समाज चिन्ह जाने नमास्तु वंग नरनाथे नमास्तु वंग परमाते नमास्तु वंग गंजे नमास्तु वंग पंजे नमास्तु वंग काले नमास्तु वंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वदेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो शाशाहे नमो महमाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो रोग शोके नमो सर्वरंग नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वरंजितं नमो सर्वभीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वयंत्रं नमो सर्वदृष्टं नमो सर्वकृष्टं नमो सर्वरंगे दर्पंगे अनंगे नमो जीवजीवं नमो बीजबीजे अभिजे बीजे समर्थं प्रसिद्धे गर्भालं स्वरूपे गर्भं प्रणासी सदा सर्वदा हृदिसदिं नवासी चरपट छंद कल प्रसाद अमृत करमे अमृत धर्मे अखल जोगे अदल पोगे अजल राजे अदल साजे अखल धर्मंग लाख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग जाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग प्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग भुगता सर्वंग देवंग सर्वंग देवंग सर्वंग काले सर्वंग काले रुआल छंद कल प्रसाद आद रूप नार मूर्त जोन प्रसाद सर्वमान प्रमान दे

ने कहा आप लोग पर खंड में दिखाते खाने वाले सह कर्म अधरे सह धर्म सर्व अपरण हटे आने दान फटे इंच आचरी सन दल प्रसाद गोविंद देव कंधे उदारे पारे हरिओम हरिओम निर्गम कम भुजंग प्रयात छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वरती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने आए चतुर चक्र दाने आए चाचरी छंद न सत्रह न मित्र न परमंग न पित्रह न करमंग न काये जन्म न जाये ना चित्र न मित्र प्रय पवित्र प्रतिशा दिशा दृशा कृष भगवती शांत प्रसाद गे के आशिज देशा के अभिज देशा के अगन कर्म के अपने परम के अभिज लुक के अभिजुक है कि अभिदूत करने के विभूत करने के राजंग प्रभाएं के धर्मंग जाएं के अशोक वर्ण के सर्व वर्ण के जगतंग कृति है कि श्रीरंग क्षत्रिय है कि ब्रह्मंग स्वरूप है ज्ञान पानुप है कि आद देव है कि आप देव है कि चित्रंग भीम है कि कह दीम है कि रोजी रिजा कर ही मेरे हायत है कि बाक बेब है कि जय बुल गैब है कि आप बुल गना है कि शाह निशाह है कि कारण कुनंद है कि रोजी दैन है कि राज करीम है कि कर्मंग करीम है कि सरबंग कली है कि सरबंग कली है के सर्वत्र माने आएंगे सर्वत्र दाने आएंगे सर्वत्र गाने आएंगे सर्वत्र पावन आएंगे सर्वत्र देश आएगी सर्वत्र देश आएगी सर्वत्र राज्य आएगी सर्वत्र साज के सर्वत्र दीन आएंगे सर्वत्र लीना आएंगे सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश आएगी सर्वत्र देश आए के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र प्रोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पान माने आए सदैव प्रधाने आएंगे सर्वत्र जापे आएंगे सर्वत्र थापे आएंगे सर्वत्र भान आएंगे सर्वत्र मान आएंगे सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग भीम है के आकल उलाम है के सर्व कलाम है के उसमो बजूंगा तमाम रुजूंगा हमेशा कलाम है श्री मदाम है गरीबल प्रास्ता है गरीबल प्रास्ता है बलंदल मकान है जमीज उलतमाम है बलिंदल मकाने जमीन वाल जमाने तमीज वाल तमाम है रुजु वाल निधान है हरी फुल जीम है रिया की जकीन है नी कुल दरंगा पेद है पांग है अजी जल नवाज है गनी मुल खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त प्रभूत है प्रभुक्त प्रवाह है श्री रुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है पेदी अनूप है समातु बराज है सदा सर्वसाज है समातु सुनाम है सदैव काम है निर्भाव स्वरूप है गाध अनूप है ओवंग आज रूप है नाग स्वरूप है नंदी नाम है त्रिपंगी त्रिकाम है त्रिभर्गम त्रिभाध्य गंजे गाध्य शुभम सर्वभाग्य सु सर्वा नराग्य त्रिपुग स्वरूप है सज है सूद है गिनाकिन प्रणास है मृत्युल प्रवास है निरौकत प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरौक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनौक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है नंग है बेगा लेगा परम है कर्म है अनाद है जुगाद है जय है प्रया पूजा दूत है।

अनुपवन आशुत्रु आजन बह कसदारियाद कथनियनाद फलखंड क्यालु गुरबर काल कार कार प्रणाम चेत चरण नाम अंश जगात जिजन बात अंचंड गात अंदर बात अंट भंडार अंठ पार

का आश करे हैं, पूर्ण होई हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सुतम दे पाऊं, सेवक सेख हमारे तारी है, चम चम सतर हमारे मारी है। आप हाथ है मुझे भरे आए, मरण काल का त्रास निभरे आए, हु जो सदा हमारे पश्चात।

जगत प्रकाश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का जीनत नह पैव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पैन पैनत हो चेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किसी

जय। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद प्रैमरी माई सतगुरु में पाया सतगुरु का पाया साहिब सेठी मन बजिया बधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया।

जात सात सांजमर लय समाये, चौथे पद कौ जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल न लागै, गुरु कै शब्द परम पौ पागै। सूरत मूरत आ

0: संत को आय तलाय मिलाए, संत का जो कि अभी टूटा है, संत का जो की पायना तो भूषा है, संत के दो की को ध्यान फरमाया, संत का जो की जड़ पाया, संत का जो की अंतर से ठोसा, जो सात दिन अंदर से की लोसा, संत के जो की जल सुना है, आपन जी जाते का है, संत के जो की को वर्णरा कहार, नानक तले उगार, संत का जो की ओगिल लाए, जे जल्द हूं मछली तड़ पड़ाए, संत का जो की फूका नहीं राजा है, जे पाप वही नन्नी चढ़ाता है, संत का जो की से अकेला, संत जो गुआर करके तुम्हारे अकेला, संत का जो की कर्म से रहे तो, संत का जो की कमी से कहे तो, कीर्तन निंद का तो ही पया, नानक जिस पास ही पया, संत का जो की दिल रूप से जाए, संत के जो की कदर है मेरे से जाए, संत का जो की सदा से खाई है, संत का जो की नम रहना जीव आई है, संत के जो की पूजन आता, संत का जो की चले न रहता, संत का जो निष्ठा कोई, जैसा पाए तैसा कोई होए, पया कृष्ण में तैस होए, नानक जन तैस होए, साहु कर सकते हो कर निहार, सदा सदा को नमस्कार, प्रभु की ओ सब करो दिन रात, सह के आओ सात ग्रात, सब कृषि वर्षा किया, जैसा कहे तैसा को किया, अपना खेल आओ कर निहार, दूसर कौन कहे विचार, जितनो कृपा करे से अपने नाम दे बटपा तो नाम भक्त जिना कह मंद राम श्लोक पज हो सियाम कपुर जिनो सिमर हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दूख परम हो जाए सतनाम श्री वाहिगुरु मनुख कीते एक व्यक्ति सब जान देवन कौल कह भगवान जिसका दिया रहे गाये बहर न सुना लागे आए मारा राखा एक आप मनुख का किसना ही आत किसका हुक्म भूत होए किसका नाम रख अंत परोए सिमर सिमर सिमर प्रवत होए नानक बिघन न लागे कोए उसत मन मह का निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रचना अमृत पियो सदा सहेला कर ले जियो नैनो तेरी सावर सारंग साध संग साध दुसंग चरण चलो मार्ग गोविंद मिटह पाप जपिए हर गेंद कर हर कर्म तरुण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बड़ भागी ते गंजल माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से हनुमंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक किसान है एको की हो सो जी जाना है नाम समझ जिसका मन मान्या नानक तनह निरंजन जान्या गुर प्रसाद अपने आप सुज जाए उसकी जानो सपना बुझ जाए साध संग हार हार जप रायत सर्व रोग ते ओ हरजन रायत अंदन कीर्तन केवल बखयान दृष्टमय कोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा किसकी कटले जन की पासा पार ब्रह्म की जिस मन फूक नानक सहन लागे दुख जिस को हर प्रभु मन किसे आवै दिलाने दुलावै जिस पर अपना कृपा करै सो एक को किससे डरा जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य नहीं आत्माया शोध को शोध को शोध को सी गया गुर प्रसाद सत सब बूझिया जब देखो तब से किस मूल नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल न किस जन्म न किस मरा आपन चरित आप ही कराय आवन जावन दृष्ट अंधृष्ट आज्ञाकारी सारी सब सृष्ट आते आप सब में आप अनक जुग जुग तो रखा पथाप अविनाशी नाही किस खंड धारण धार हो ब्रह्मांड अलख भेद पुरुष प्रताप आवज पाए तनानक जाप जिन प्रभु जाता तो शोभा वंत सर्व संसार ग्रह चन्मंत प्रभु के सेवक सरल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख विसारण आपे मेल लय कृपाल गुरु का सब जग पह निहाल उनकी सेवा कोई लागै जिसनों कृपा करे बड़ भागै नाम जगत पावै विश्राम नानक तिन पुरख कौ सम करमान जो कि करे तो कल तेरंग सदा सदा दसे हर संग सहित पाए हुए सो होए परने हार पिछाने कोए रोका किया जन्मित लगाना जैसा साता है सब दाना जिसे जित माह समाए कोए तो संधान हूँ बने आए और को आप दिनों महान नान प्रजने को जान सुखमणि सुखमर प्रभु नाम भक्ति ना कह मन सराम कलो सर्व कला प्रभुर प्रभ विरथा जानन हार ज्ञान कर सिमरन उदरिया नानक बलहार सत नाम श्री वाहिगुरु टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जात अविनाशी प्रभया ते आप आपन किया कुछ न होए जे तो प्राणी लोचे कोए जिस में नाही करे कुछ काम गत नानक जापे हर नाम रूपवंत है नाही मोह है प्रभु की जोत सब करतो है धनवंता हो क्या को गर्व है ज्ञा सब किसका दिया दर्द है हाथ पूरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहतावे जे को हो वह दातार किस देन हार जाने गवार जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग नानक सोजन सुरा अरोग जो मंदिर को थामे थमन त्यो गुर का सब मन है थमन जो पाकान नव चर कर प्राणी गुर चरण लग सने कर जो अंधकार देख प्रगात गुर दर्शन देख मन हो बगात जो मन ज्ञान में मार्ग पावे ते साधु संग में जोत प्रटावे तिन संतन की बातें धूर नानक की कर लो चापूर मन मूर्ख काहे दिल लाइए पूर्व लिखे काले कह पाइए दुख सुख प्रभु हार अगर त्याग तू फेट सार जो कर सवित कुमान उला काहे क्रिया ज्ञान कौन बस आई कह रहा है संग लगत रहे रस लोभी पसंग राम नाम जप हृदय माहे नान के पास ती कर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया सज मान ले हो मनमोल राम नाम हृदय में तोल लाल खेल संते संचाल और त्याग क्या जंजाल तन तन कहे तब कोये मुकुज हर दर से कोये इवे वापार विला वापार है नानक सा कह सद भले हार है चरण साध के पैसे जियो हर प्रसाद को अपना जियो साध की धूर कर हो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध श्रवण भागी पाई है साध संग हर चीज संगाई है अंत बिगनते साधु राख है हर गुण गए अमृत रख है ओट गही संत है दर आया नानक सुख नानक से पाया सर्व सुख नानक से पाया नरसत को जीवालन हार सुखे को देव आधार सर्व दान जाके दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहन पाहे सबके किसका हो करने जो किस बंधु पर भान हो जप जन सदा सदा दिनैणी सबके उच्च निर्मल है करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक को जन निर्मल किया जानता है मन गुर की प्रतीत फिर जने आवे हर प्रतीत भक्त भक्त नियति हो लोए जानता है हृदय को सोए सच करनी सचता की रहत सत हृदय सतमुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वर्षे साचा प्रसार सार ब्रह्म जन सच कर जाता नान सोजन सच माता सुखमणि सुखमृत प्रभु नाम भक्त बिना कह मन विश्राम श्लोक रूप नाय एक नाम पिछ प्रभु गुण से प्रभु खिन्न सब बजाए नानका इस होवे सो प्रसन्न सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी सब नाती प्रेम महिराप मानो की तू प्री प्याव इसका प्रण नहीं किसी हो कोए सब निरंतर को सोए आपे दीना आपे दाना वह जमीर से जहीर से जाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा का आनंद आल गुप्तांद सात तरह की करनी पाओ नानक कर मन के हो नाओ मनसा पूर्ण करना जो जो कर पाया कोई हो हर न पर न जाने सरको इसका मन कर न जाने हो आनंद रूप मंगल सब जानता है सर्व सब सुनिय है करता का साज महराज जोग में जोगी तप में पतीसर वृहस्त में भोगी चाहे चाहे भक्त है तो पाया नानक चित पुरख का कने अंत न पाया जाकी लीला की नित नाहे सब देव हरे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूछ सगल पुरोही अपने सूर समत ज्ञान ध्यान दिंदे चंदास नाम ध्यावे ते क्यों गुण में जाको परमाए जन्म रह करे जाए ऊच नीच सिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नाम की ज्ञान नाना रूप नाना जाते रंग नाना पे करे करंग नाना दिल की में विस्तार प्रवीणा पिए संसार नाना चित करे सन्माहे पूरे पूर्ण सुखाए नाना विकल्प बनाई अपनी चिंतिया से पाई
1: सब करते के सब के साओ जब जब जीव नाम करना हो नाम के तारे सगरे जंत नाम के तारे कण ब्रह्मांड नाम के तारे सुमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे तुरिया सब सुन नाम के समुद्र संसरण कर कृपा जापने नौ लाए नानक सब के पर में सो जंगत पाए रूप सत जाता सत्य स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत्या की बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करनी निर्मल निर्मली इसे बुझाए से सब परी सत नाम सब का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर के पाई सत बचन सब उपदेश सत के जनजा कैर दे प्रवेश सत निर्थ बुझे जय को नाम जबता की गत होए आप सत किया तो सत आपे जाने अपनी नित गत जिसकी सिर्फ सुख सो करने हार और न बूझ कर विचार करते की नित न जाने किया नानक जो पावे सो वर्तिया विष्णुन विष्णु कह विस्मार जिन बुझा तया सवार प्रभु कह रंग राज जन रहे गोसा दक्षिण पदार्थ लहे कोई दाते दो काटन हार जनता संसार संसार जनका से तोड़ भागी जनका संगे प्रेम लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नान फल पावे सुखमणि सुखमृत प्रणाम भक्ति ना से मन विश्राम श्लोक आद सच जुगाद सच है ते सच नानक होती के सच सतनाम श्री वाहिगुरु अस्पति चरण सत सत प्रसन्हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत देखनहार नाम सत सत ध्यानहार आप सत सत सब धारी आपे गुणिया पे गुणकारी सब सत सत प्रभु भक्ता सुर सब सत सत जस सुनता बुझन हार को सत सब होए नान सत सत प्रभु सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या कर्ण करावन तन मूल पिछान्या या कह दे विश्वास प्रभु आया सत ज्ञान मंत्र लटाया पहल से निर्भो हुए बसाना जिसे प्रिया समाय समाना बस माहे बस बधाई सब को कहना कहना जाई बुझे बूझन हर विवेक नारायण मिले नानकेक ठाकुर का सेवक आ गया तारी ठाकुर का सेवक का पुजारी ठाकुर के सेवक कैमन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवको प्रपाल नहारा सेवकी आपके निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रवतार है नानक सो सेवक सा कुमार है अपने जनता प्रदा ढाक है अपने सेव की सर प्रदा है अपने दास को देव डाई अपने सेव को नाम जुपाई अपने सेव की आप फत रात है अपना की गर्मी को नला है प्रभु के सेव को ना पहुंचा है प्रभु के सेव को ऊंचे ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक को देव यह बिस्कुट आया नीची सीढ़ी में कल रात है प्रथम कर लक्कर को खिलाता है जिसका साधन करते आप को रास देकर हाथ मानस जितन कर सब भात पिछले कर सब दिखे जात मारे न राखे और न कोई सर्व जिया सारा का सोए सारे कोई कर है प्राणी जितना सब लख बढ़ानी बारंबार बार बार जितिए श्री अमृत मंथन तृतीये नाम रतन जिन गुण उपाया किसकी चवर नाई दृष्टाया नाम तन नाम प्रांग नाम सुख नाम कसंग नाम रस जोजन सुनसाने मंत्र नाम ही नाम सुमाने पूर्त बैठ सोत नाम कौ नाम जन के सुखाम बोलो जब ये बदन रात प्रभु अपने जन की नी दात करे भक्ति आत्म का चाहे प्रभु अपने सिर समाये जो हुआ हो तो जाने प्रभु अपने का हुक्म पिछाने इसकी मैं ना कौन दुकानो सब गुण गए कहीं जानो आठ पहर प्रभु सह झूरे नान कौ नान से जिन पूरे मन मेरे चन की ओर ले गए मन तने अपना चन जन दे गए जिन जान अपना प्रभु पिछाता हो जन सर्व शोक का दाता इसकी कर्म सर्व तो पावे सदर सर्व सर्व पाप मिटावे अवश्य अंत सभी शाद तेन की सेवा लाग आवन जान न हो भी तेरा नानक से जन का पूजो सब तेरा सुखमणि सुखमृत प्रभु नाम भक्त जी ना कह मन विश्राम श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर का नाम इस कह संग से खुदरा नानक हर गुण गाओ सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपति सतगुर सिखी कर प्रतपाल सेवक सौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिराय गुर बचनी हर नाम उचराय सतगुर से के बंधन काटा है गुर का सिख विकार से हटा है सतगुर सिखो नाम संदेह गुर का सुख वरसा दीहे सतगुर सिख का हर सत सवार है नानक सतगुर सिखो जी नाल कुमार है गुर का जय सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आप सो कर कितने जनावे हर हर नाम हृदय सब ध्यावे मन दे कह सतगुर कह पास सिख सेवक के कार जरास सेवा कर तो हे नी स्वामी सिखो और प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जित्याग करे नानक तो सेव गुर की मत रे गीत जितवे गुर का मन मान है तो सेव परमेश्वर की गत जान है तो सतगुर जित सीधे हर नाओ अंत बार गुर तो बल जाओ सर्वधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मन जन जन मह पार ब्रह्म एक है आपने कृष्ण परम सहज ध्यान फलिया न जाइए नानक ऐसा गुरु और भागी पाइए सफल रत्न ते संदीप पर सन चरण गत निर्मली तेत संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दृह गवे सुनकर वचन कर आवाने मंत्र तो आतम पतिया ने पूरा गोया से जा का मंत्र अमृत दृष्ट दे कह वसंत गुण ध्यान से चिंत नहीं पाए नान जिस पाव लय मिलाए जे बारे को सुने तत्व पूर्ण लगे साहु गोल न पंच प्राणी अगम गोचर प्रो निर्वाणी मेरा हार निर्वैर सुखदाई संत चिंत किने न पाई अनको सबत बंधन में कराया चरण कौन से देख रहे सदगुरु हरि सुरगुरु अपने नानक जिस प्रकार का प्रभु जपने एवं हर पाजन को अमृत की अमृत हो उस पुरख का नहीं कभी नाश ज्ञान के मन पर के मुंता आठ पैर हर का नाम ले सचिव देव तो सेव तो कहो दे वो माया के संग न ले तो मन में रखे हर एक अंधकार दुख प्रकाश से नन परम मोह दुख कर ते ना से सब तो मन कान वरसाई आनंद पे आदु बना के पाई जन्म मन के मिटे अंधे से साधु के पूर्ण उपदेशे पौचुकानर को है बसे सब ध्यान मन के कह न से जिसका साधन कृपा तारी सार समझ अपना मुरारी कित पाए चुके परम गुण असुख नान हर हर जस सरवण निर्गुण आप सिरगुण की ओही करा तार जन सगरी मोही अपने चरित्रया बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्व निरंतर ही को सोए ओत पुत्र व्या रूप रंग सह प्रगा सर्व सहसंग रच रचना अपनी कल धारी अंत बार नानक बलहारी सुखमणि सुखमर प्रणाम भक्त जिना कह मन विश्राम सलोक साथ न चाले दिन भजन टिकिया सर विचार हर हर नाम कुमावना नानके हो संसार सत नाम श्री वाहे गुरु वस्तपति संत जना मेर करो विचार एक सिमरन आधार अवरो पाव समीप विसार हो चरण कमल मय अवतार हो करण कारण सो प्रभु समर्थ दृढ़ कर गहो नाम हर वात इहो संत संच हो भगो को अंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुण टुटतावे है सो तन हर सेवा से पावे है जिस सुख पंत बाटे मीत सो साधु संग पहित जिस शोभा को कहे परी करनी सा शोभा पर हर की करनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर बदलाए सर्व निधान में हर नाम निधान जप नानक दरगे प्रवान मन पर बहुत बहो हर कह नाए दर सावते आवे खाए को बिघ न लागे कोए या कर बसे हर कोए कल का खांडा हर नाओ सिमर सिमर सुधा तो पाओ पौगन तय पूर्ण व्यास भक्त पाया तुम प्रगास चित कर जाए बसे अविनाशी कौ नानक साठी जम पासी सत जी चार पै जन पाचा जन्म रे चौका चौकाचा आवा गौर के प्रवते आव त्या सरम गुरुदेव इस रतन जन का वे उधार हर हर सिमर प्राण आधार अंकु पाव न सूचना हारे सिमर तो सास बे विचारे हर की पत्र मन लाए मन मन स्नान फल पाए संग न चाल तेरा कहा तू क्या लुटा वह मूर्ख बना सुपनी पुता मर बनता इनसे कहा वह तुम कौन सनाता राय रंग माया विस्तार इनसे कहा कौन सुकार अस हस्ती रस सुवारी झूठा डंप झूठ पा सारी जिन दिए बिना दिवाना ना मिसार ना पछताना गुरजी मत तू ले आने भक्त बिना बाडू बेचाने हर की भक्त सरोवर नीत निर्मल हो तुम्हारो तीर चरण कमल राखो हुकम माए जन जन के कलिक जाहे अब जप हो अबरा नाम जप आव हो तुम तो कह करह जस पाव हो सार भूत सत हर को ना हो सहित भाई नानक गुण गाओ गुण गाओ सर तेरी तुत महल बिंत जाए हो मैं दिख पैल ओहे अचिंत से सोनाल सात ग्रह करना कुमाल चार त्याग सबरी मना सार संपावे सच तना हर पूंजी संचर हो व्यवहार इन सुख दर्गे जयकार सर्व निरंतरी को दे सौ नानक जान के मस्तक ले एको जाते को साला है एक समय को मया है एक से गंगाओ अनंत मंथन जात एक भगवंत एको एक एक हरात पूरन पूर हो प्रभ ज्ञात अंत विसारे से पहे एक अराध प्राप्त गए मंथन अंत एक प्रभराता गुरु प्रसाद नानक जाता सुखमणि सुख अमृत प्रणाम भक्तिना ते मन विश्राम श्लोक तीर्थ तीर्थ प्रव्याया प्रया तो करनाय नारद की प्रवेणसी अपनी भक्ति लाए सत नाम श्री वाहे गुरु अस्पति जातक जन जाति प्रवदान कर कृपा देव हर नाम साधना की मंगो तूर पार ब्रह्म सदा तूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो सात सात प्रभु में त्यावो चरण कव तो लागे प्रीत भक्त करो प्रभु की नतनी एक ओट एक आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार प्रभु के दृष्ट महत्व होए हर रस पावे बिरला सोए जिन चाहते ते जन प्रस्ताने पूर्ण पुरख नहीं दुलाने तो भर परे प्रेम रंग उपजे चाओ साध के संग परे करण आन सब त्याग अंतर प्रगा समझन ले लाग पर पागी जत्या प्रभु सोए नानक नाम रते सोए सेवक की मनसा पूरी पही सदगुर से निर्मल मत लई जन को प्रभु हो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच्छा इच्छा सुनी श्रद्धा सब पूरी रब रहा सब संग हजूरी जिसका शासन भी हम लाए नानक भक्ति न समाये शोक तो विषय जी कारण पाने शोक तो विषय जी किया जाने शोक तो विषय जी सब कि दिया शोक तो विषय जी जीवन जिया शोक तो विषय जी अगन रात है गुरु प्रसाद को बिरला लाख है शोक तो विषय जी से काट है जन जन का टूटा गांड है गुरपुर बुझाया अपने अपना नानक जन से आया साजन संत करो यो काम अंत आज को हर नाम सिमर सिमर सिमर सो पावो आप जपो अवर है नाम जपावो भक्त पाए करिय संसार बिन भक्ति तन होती चार सर्व कल्याण तू निज नाम भूत जा पाए विश्राम सर्व दुख हो सनाथ नानक नाम जपो गुणसाख उपजी प्री प्रेम रख जाओ मन निंत्र ही सुहाओ नेत्र हो के दर्श सुख होए मन विषय साध चरण सोहे भक्त जिना कह मंथन रंग बिरला को उपाय संग एक बस ये कर्मया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कई जाए नान करया सर समाये प्रभ भक्त दीन दयाल सतुचुटा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व ढाकर प्रसपाल आद प्रसार प्रसार भक्ति न के प्राण आधार जो जो जप है तो सुनीत भक्त पाए लाए मन हीत हम निर्गुणी आरणी कह जान नानक सिमरी सरण प्रसुहान सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमकार के गुण गाये अंतराय तो बुढ़ियाई हर के नाम की सावन पाई बहु भोजन का पर संगीत कितना जलती हर नीत फली तो करनी सुबह कनवन हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सात संत उद्योग निवास पूर्ण सुख नान प्रगास सुखमणि सुख अमृत पर नाम भक्ति न से मन विश्राम श्लोक सरगुण निर्गुण रंग का सं समाधि आप आपन किया नान का आपे ही कर जाप सत नाम श्री वाहे गुरु अस्तुति जब अकार हो कच न दृष्टि सात तब कौन तब कहते हो सात जब तारी आपन सं समाद तब बैर ग्रोध के संग समात जब इसका वर्ण चिन्ह न जाप तब हर तो कह दिया जब आपन आप आप का ग्रहण तब मोह कहा बहुत कर्म आपन खेल आत्मवर्ती या नानक पर निहार न दूजा जब हो प्रतिवल सही तब बंद मुक्त के शोक को गणी जय के हर गम पार तब नरक को पौने उतार जब निर्गुण प्रसय पाए तब से सब कहो खाए जब आता है आप अपनी जोत है तब कवन निगर कवन कत डराए आपन खेलता करने हार नानक ठाकर गम पार अविनाशी सुविधा प्रयासन पह जन्म को काम विनाशन जब पूर्ण करता प्रस्त हो तब जम की प्राप्त हो जब भेद का गोचर प्रवेशा तब चंद्र गोचर के पुष्प लेखा जब नाथ नरंजन गोचर गा दे तब पहुंचते कौन बंधन गा दे अपन आप आप ही चर जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा यह निर्मल पुरुष पुरुष पद होता सह दिन मैल कहो कट होता यह निरंजन निरंकार निर्माण सह कौन को मान कौन अभिमान यह प्रभु केवल जल्दी सह चल चित्र लक्ष्य होगी यह ज्योत श्रुति ज्योत संग समाव सहित से भू कौन दृताव कर्मक्राम करने हार नानक करते कहना है कुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कौन माय बाप मित्र सुख पाई जय सब कला तेरे प्रदीन तय देख सिंह तो का कुन जब अपन आप आप उतार है तब सब ने सबन कहा विचार है जय अपन हो तो अपने आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए तेरा विस्मरण विस्मर है विस्मार नानक अपनी गत गत जानो आप जय अचल तेरा फिर समाया तू अखिल ब्याह समाया आप को आपे आदे गुण का ना ही प्रवेश जय कहे के भगवंता तो कौन चिंता गय चिंता जय अपने आप वापति आरा तय कौन कथे कौन सुनने हारा बहुदे अंत उसे ऊंचा नानका अपे तो ऊंचा जय आप जो प्रपंच अपार क्यों गुण में किनो विस्तार तो आप कौन सह कई कहावत हो नर्क हो सुर विचावत आल जाल माया जंजाल हमने मोह कर पै सहार दुख सुख मानक मान अन्य प्रकार की अभ्यान अपन खेल आप कर देखा है खेल तो सोच है तो नानक एक है जय अभिज भक्त है आप जय कराय पासार संत प्रताप दो पापे सही उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौ सुख करे आनंद चोर आपे के रस भोगन निर्जोग इस पावे से अपन न लावे इस पावे से खेल खिलावे देख मार रखा हवन तो अतोला है जो बुलावो त्यो नानक दास बोला है सुखमनी सुखमृत प्रणाम भक्ति न कह मन विश्राम श्लोक जी जनते था प्राप्त वर्तन हार नानके को कसरिया दूजा कह दृष्टार सतनाम श्री वाहेगुरु आप कथ आप सुनने हार अपे एक आप विस्तार जब भावे का सृष्ट पाए अपने पाने लय समाए तुम ते तिन नहीं किसो होए अपन तू सब जग सुरोए जब को प्रभु जियो आप बुझाए सतनाम सजिन पाए तो तुम दसी तत्ता देता नानक सगल सृष्ट का जेता जी अंतर तो सांके हाथ दीन दयाल नाथ सुनाथ मिश्रा से कोई न मारा है तुम वक्त जिस मनोहार है इस तरह जब कहा को जाए सब सरेत नर मिल रहा जी की ज्योतियां कर सब हाथ अंतर बाहर जन उत गुण निधान देन तो पार नानक दास सदा बिहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब ऊपर हो कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर्यामी रहो व्यास प्रतिपाले जीवन बहुत पात जो जो रचे सो सह इतिहास जिस पावत खिलाए मिलाए तो करे हर की गुण गाये मन अंतर विश्वास कर मान्या कर्ण हर नाम संगीत जान्या जन लागा हर हरे का नाये इसकी आसन वृद्धि जाए सेव कर सौ सेवा बनियाई हुकुम पूर्य परम पद पाई इसके ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर अंगन पूजे है गुरु के पैर ए लोग ये प्रलोक से हेले नानक हार प्रव्या पहने ले साध संग मिल कर हो आनंद गुण गाव परमानंद राम नाम तक करो विचार दुर्लभ देह का करो उदहार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण कर्म का कह चुआओ आठ पैर प्रत्येक हो नेरा मिटिया ज्ञान दिन से अंधेरा सुन उपदेश दिल पावो मन के नान फल पावो अल्प पल्प बोले हो सवार राम नाम अंतर और सहार पूरे गुटी पूरी दीखिया जिसमन बसे जिसमें साथ तरीकिया मन तन नाम जिको दिवलाए दुख दर्द मन से पहुँ जाए सच वा पार करो वार वारी दरगह निवह के तुम्हारी टीका के तो मन माहे नानक बहर ना रह जाए इससे दूर कहाँ को जाए उभरा रखन हार से आए निरपो जप सरल पो मिटाए प्रभु कृपा से प्राण सुखाए जिस प्रभु आते तितना ही दुख नाव जप मन हो सुख चिंता जान के हंकार ते जन को कोई न पहुंचन हार तेरे ऊपर ठंडा गुर पूरा नानक सांग कार्य पूरा मत पूरी अमृत जा की दृष्ट दर्शन ते सौदर श्रेष्ठ चरण कमल जा के अनूप सफल दर्शन सुंदर हरो धन सेवा से प्रमाण अंतर्यामी पर प्रधान जिस मन बसा सहोत न्याल ता कनिक ना हवत काल और पैसा हमारा पद पाया सार समान घर से आया सुख मनी सुख मत करो नाम भक्ति ना के मन राम श्लोक ज्ञान मन गुर दिया अज्ञान देर बनात हर कृपा से संत भेटिया नानक मन प्रगास सत नाम श्री वाहेगुरु संत संग अंतर प्रभु दीठा नाम प्रभु कला गानीठा सब समग्री एक सकटमा है अंतरंग नाना दिसता है नौ निज अमृत प्रभु का नाम देही मैं काल सराम सुन कुमार नाल कहन गए चिर मिसमार चंदे कर काल दिखाए नानक से जन को जी पाए तो अंतर तो बाहर अनंत प्रकट व्याप रहा तो अंत सरमय पास खयाल सर्व लोग पूर्ण प्रतपाल बन सिंह पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आ गया तय सब कर्म पौन पानी वह संत माने चार पुण बह जिसे समारे चित्ते चन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नाम सुनताओ वेद पुराण सिमरत में देख सत्य सूर नक्षत्र में एक वाणी ग्रह की सब को बोला है आप अडोल न कुम डोला है सर्व गुणा कर खेल है खेल गुमो न पैसे गुणे अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत सारे हो सोनी हो सोत गुर प्रसाद भक्तनाथ नानक चन में विश्वास संत जिना का पेखन सब ब्रह्म संत जिना का हृदय सब धर्म संत जिना सुने शुभ वचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी रहत सत वचन साधु सब कहत जो जो होए तो ही सुख मान है कर्म करावन हार तो जान है अंतर बसे बार पियोरी नानक दर्शन देव समोही आव सत किया तो सत किस प्रभु के सगले उत्पात किस भावता करे विस्तार किस भावित करे संसार अंत कला लकी न जाए इस भावित लय मिलाए कौन निरत कौन कहे दूर आपे आप अक्सर भूर अंतर्गत जनाए नानक से जन आप बजाए सर्व भूत आप वरतारा सर्व नैने आप देखन हारा सब मगरी जाता तना अपन जाता भी सुना आमन जाने फेर बनाया आज्ञा कारी की नहीं माया सबके मादली सो रहा है जो कहने सो आप एक है आज्ञा वह आज्ञा जाए नानक जा पावे तले समाए इससे हुए तो नहीं बुरा सो रहे कहो हो कि नहीं कुछ करा आप भला कर तू रतनी की आपे जाने अपने जी की आप साज तारी तू साज उसको तो अपने सम्राट ताकि बात मिलते नहीं जाए दूसरे हुए तो जी पाए इसका किया था प्रमाण गुर प्रसाद नान के जान जो जाने के स्वस्थ होए आप मिलाए लें तो सोए वो तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिसर दे तो अंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जल कराया जन आवन का है सुहाओ जन का संग के त्याग लेना हो आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक से जन सौ सदा नमस्कार सुख मणि सुख अमृत गुरु नाम भक्ति ना से मन विश्राम श्लोक पूरा प्रभे राध्या पूरा जाता नाओ नानक पूरा पाया पूरे से गुण गाओ सतनाम श्री वाहिगुरु अस्तरी पूरे गुरु का सुन उपदेश चार ब्रह्म निमित करते सात सात सुमर गोविंद मन अंतर की प्रत्यंग आत नित्य गोत्रांग संतना की तोर मनमांग आव छोड़ विनती करो सात सव्यावन सागर करो हर तन के ऊपर ले हो भंडार नानक गुर पूरे नुस्कार खेम कुशल सहयानंद साध संत परमानंद नरपन वार उदार हो जियो गुण गोविंद अमृत रखियो के चितो नारायण एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दो भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाले रसन संत कुमार सो तो उधार अकरे सब लोग निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लगा हर रंग जय जय सबजना हदवा जय सुन सुन नंद करे प्रभुदा जय सर्वते गोपाल महात कह माथे नान कुदरे तन कह साथे स्वर्ण जो सुन सर नहीं आए कर कृपा प्रभाव मिलाए नित गय बैर पै सवरेन अमृत नाम साथ सर लैन तो प्रसन्न पै गुरुदेव पूर्ण हुई सेव की सेव हाल जिंजाल विकार करे से राम नाम समर्थना कहते कर प्रसाद दया प्रभारी नानक ने भी सेव हमारी प्रभु की ओर करो संतनी तो साव कहानी का गर्जी सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सहोत दहान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख पर सब लोए सबते उच पाए स्थान गौर न हो गए अमन जान हर तन काट जड़े जन सोए नानक जिसा है प्राप्त होए खेल पांच रे धनव नित बुद्ध ज्ञान सर्व सहते विद्या तप जो प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ पूर्ण प्रवास सब कह मग सब से उदास सुंदर चतुर तत् का देता सुंदर सुंदर एक दृष्टेता इन पल सिंह जन का मुख बने गुरु नानक नाम वचन मन सुने क्यों निधान जपे मन कोए सब युग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम सुनवाणी सिमर शास्त्र दे बखाणी सगल मतान केवल हर नाम गोविंद भगत कह मन विश्राम कोट अपराध साल समझाए संत कृपा ते जम ते सिखाए जम कर मस्तक कर्म प्रपाए साध शरण नानक से आए जिस मन बताए सुने लै प्रीत सिंजन आवे हर प्रभ सीत जन्म मरण ताका दूत निवार है दुर्लभ दे तत्काल उधार है निर्मल शुभ अमृतता की बाणी एक नाम मैं समानी दू करो विनते पै कर्म साध नाम निर्मलता के कर्म सबते उच्चता की शोभा बनी नानक एक गुण नाम सुख बनी सबते उच्चता की शोभा बनी नानक एक गुण नाम सुख बनी सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान करके खालसा जी का सुन बोलना श्री वाहिगुरु जी ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਠ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਅੱਖਰ ਲੱਭ ਤੋਂ ਪੁਰ ਚੁਕਮਾਪ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਪਾਸ ਸਿਰ ਪੜ ਦੇ ਸੰਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਇਵੰਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪੰਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
3: ਕੇਲਬੂ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375
4: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ singhsabha2@gmail.com ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ singhsabha2@gmail.com
5: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

भी एक बारी याद कर लिया कर। भाव के सतगुरु जी ने सानू किरत घण बनन की प्रेरणा नहीं दिती, शुकराने विच भिजन की प्रेरणा दिती है। बाबा नंद सिंह जी भी बचन करते सन, एक अद्धी दात ना मिले किते ओदे पिछे लांबे ना दे, कभी कृपा बह के याद करते लाइन लगी है कृपा दी। आखदे सन चंगा भाई वाल मिले ओ भी कृपा, चंगा गुआंढी मिले ओ भी कृपा, चंगा मित्र मिले ओ भी कृपा, चंगी औलाद मिले ओ भी कृपा, चंगी पत्नी मिले ओ भी कृपा, चंगा भरा मिले ओ भी कृपा, चंगा कारोबार मिले ओ भी कृपा, चंगा मकान मिले ओ भी कृपा। इसे लिए गरीब नवाज

0: अर्सिखू अपने ही मन को एहलाल छो गुण तो उचरू जब भाव की औध निधान बने अधीरण में तब झूझ मरो
1: पश्चिमी सभ्याचार दे घेरे विच वस रहे पंजाबी साहित अते बोली दे समर्थक अते इस दी उन्ती दे उपासक श्रोता जन आओ फिर टाइम हो गया तुहाडे मनपसंद सिक्खी विरसा प्रोग्राम दा। इस प्रोग्राम विच शामिल होण लई आप जी दा निघा स्वागत है। मैं हां परमिंदर कौर
2: अते मैं हां पलविंदर कौर।

हे भाई प्रभु पति दे बिछोड़े बिच एक पल सी एक दिन सी मेनू इउं जापदा है जिवें ए दिन कदे मुकदा ही नहीं। मेरे मन विच बड़ी तांग लगी रहिंदी है कि मेनू कोई अजिहा संत मिल पाए जेड़ा मेनू प्रभु पति नाल

दिन दी एक कड़ी भी प्रभु पति दे विछोड़े विच मैनू कई दिना बराबर जापदी है। प्रभु पति दे मिलाप तो बिना मेरा मन तीर्ज नहीं फड़दा। मैं हर वेले सोचदी रहंदी हां कि प्यारे ने किवें मिला।

इसलिए हे प्रभु दिन की एक कड़ी है प्रभु पति दे विछोड़े विच मैनू कई दिनां बराबर जापती है प्रभु पति दे मिलाप तों बिना मेरा मन तीर्ज नहीं पड़ता मैं हर वेले सोचती रहती हाँ कि प्यारे नूं किवें मिलां।

हे दास नानक, जिस जीव नूं परमात्मा ने दर्शन दिता, उसने अपने आत्मक जीवन नूं पड़ताल के सब तो उच्चा आत्मक आनंद प्राप्त कर लिया।

सतगुरु अर्जन साहिब जी दा आगमन गुरु रामदास साहिब जी दे ग्रह विखे माता भानी जी दी पावन कुखों गोइंदवाल दी पूजनीक धरती ते 15 अप्रैल 1563 ईस्वी नूं होया। इतिहास खोजी जनों भावे के उस समय 15 अप्रैल दा दिन सी, पर दिनां दी बाद घाट नूं नजर रखदिआं नानक शाही कैलेंडर मुताबक गुरु अर्जन साहिब जी दा आगमन दिवस 2 मई का पक्का कर दिता गया है। श्रोता जन, गुरु इतिहास नूं जद भी पड़चोलोगे एक तथ उगड़ के सामने आंदा है, ओ ए कि गुरु अर्जन साहिब जी दे तुल सहनशीलता दी शक्ति दी तुलना किसी भी पैगंबरी इतिहास चो नहीं मिलेगी।

गुरु इतिहास खोजी जनो, आप जानते हो कि माता भानी जी गुरु नानक साहिब जी की तीसरी जोत गुरु अमरदास साहिब जी की सपुत्री सन। गुरु अर्जन साहिब जी का बचपन अपने नानके घर गोइंदवाल साहिब ही बीतिया। आप जी पहले गुरु सन जिन्हों का बचपन सतगुरु अमरदास साहिब जी की निगरानी अथवा सिखी वातावरण प्रफुल्लित होया।

आप जी ने गुरमुखी विद्या बाबा बुद्धा जी पासों प्राप्त कीती। हर प्रकार दी धार्मिक आत्मिक अति दुनियावी सदाचारक विद्या 5 साल दी आयु विच ही आरंभ हो चुकी सी। पिछले सतगुरां दी बाणी गुरु मर्यादा विच गुरु तीसरे पातशाह जी दी हाजरी विच ही प्राप्त कीती। तदे ही पट कलश हर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 1407 उपर अंकित सवैये अंदर लिखते हैं, गुरु रामदास कर कियो परगासा, सगल मनोरथ पूरी आसा, तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, कल जोड़ कर सुजस विखाण्यो। भाव हे गुरु अर्जन, कल कवि हाथ जोड़ के आप जी दी सिफत उचारदा है। आपने गुरु रामदास जी दे घर जन्म लिया, उन्हां दे सारे मनोरथ ते आसां पूरियां होईयां। जन्म तो ही आपने गुरु दी मत द्वारा ब्रह्म नूं पछाणिया, भाव परमात्मा नाल डूंगी सांझ पाई हुई है।

प्यारे श्रोता जन, आप जी ने गुरु अर्जन साहिब जी की परवरिश दे समय दियां कई साखियां सुनिया जा पढ़िया हन, जो दुनियावी पक्षों असा अनाड़ी जीवां नूं समझाउण लई एक नमूना हन। अपने इस विचार नूं नखेड़न लई आप जी दे ध्यान गुजरे कुछ इतिहासिक तथ्य पेश करना चाहते हैं। एक बार बालक गुरु अर्जन साहिब जी खेड़दे खेड़दे तीसरी जोत गुरु अमरदास साहिब जी दे मंजे दे पावे नूं फड़ के हलूणा देण लगे, तां सुभाविक ही सतगुरु अमरदास साहिब जी ने यह बचन आख्या, यह कौन है वड्डा पुरख जिसने असाडी मंजी हिला दित्ती है। इस वार्ता का जिक्र बंसावली नामा दे पन्ना 34 उपर लिखा मिलता है। चिंतित होके शायद गुरु पिता जी नाराज हो गए हन। बीबी भानी ने बेनती की, हे पिता सतगुरु जी, ए है सुता सुत दोहता। तद सतगुरु जी ने बचन किया, ए दोहता बाणी का बोहिथा। इसका वर्णन सूरज प्रकाश दे पन्ना 180 ते सोढ़ी तेजा सिंह जी इस तरह करते हैं, भारी जग गुर जग में बिजते हैं, बाणी के बोहित बढ़ हबे हैं।

गुरु जी ने अपने छोटे पुत्र नूं लाहौर जाण दा हुक्म कीता अते आख्या, असाडे हुक्म तों बिना उत्थों वापस नहीं आउणा, बल्कि अपनी धर्मशाला विच निवास रख के संगतां नूं गुरमत दा उपदेश दृढ़ करवाउंदे रहना है।

0: अगले दिन पिरथी चंद सतगुरु पिता जी पास गुरियाई दी बाबत गलबात करन लगा। बड़ी चर्चा कीती, वाद विवाद कीता, पर गुरु पिता ने समझाया कि झगड़ा ना कर, क्योंकि गुरियाई खसम दी दात है, मालक दी जोत अते रब्बी अजमत है। भाई गुरदास जी ने इस प्रथाई लिखा है, दात जोत खसमे बड़ियाई।
1: श्रोता जन, हंकारी अते मूर्ख मन कद समझदा है। पिरथिये ने हठ धर्मी वर्तीरा अपनाई रखिया अते एही गल आखी जांदा सी कि मैं बड़ा हां, गुरगद्दी मेरा हाथ है, मैं अर्जन देव नूं गुरगद्दी ते नहीं बैठन देवांगा।
0: गुरगद्दी दी प्राप्ति पिछे घरेलू वाद विवाद नेता प्रति होर बढ़दा ही गया। सतगुरु जी ने वाद विवाद के बावजूद अकाल पुरख की आग्ञा के अनुसार गुरगद्दी के कावल सिर्फ सब तो छोटे साहबजादा गुरु अर्जन साहब जी ने ही समझिया। गुरगद्दी समागम गोइंदवाल साहब निश्चित किया गया।
1: श्री गुरु नानक साहब जी की कायम की मर्यादा अनुसार पहला बाबा बुढ़ा जी ने गुरु अर्जन साहब जी ने सिंघासन ते बिठा के गुरियाई दी रस्म अदा कीती। जद ए रस्म पूरी हो गई तद पंज पैसे ते नारियल अगे रख के सतगुरु रामदास साहब जी ने आप गुरु अर्जन साहब जी दे चरणा उपर मत्था टेकिया। तीन परकर्मा लेके गुरियाई

0: चंद्र हो।
1: पिथी चंद दी विरोधता कटन दी थां बदी गई जद सतगुरु रामदास साहिब जी दे ज्योति जोत समाउण वाद दस्तार दी रस्म दा समा आया तद वी पिथी चंद रौला पाउण लगा अते आख्या कि मैं वड्डा पुत्तर होण करके पगड़ी बनण लई उस दा हक बनता है। वंशावली नामा दी लिखत दे आधार ते बाबा बुड्ढा जी अते होर सियाणे गुरसिखां ने समय दी नजाकत नूं समझदे होए एक पगड़ी पिरथी चंद नूं दे दित्ती। उस दे जाण बाद गुरु अर्जन साहिब जी दी दस्तार बंदी होई अते सिख संगतां ने गुरु अर्जन साहिब जी अगे आपो अपनियां भेटावां रखियां। अपना अपमान समझ के पिरथिया गुस्से विच आया अते गोइंदवाल छड के अमृतसर जा वसिया।

तो रे नाल जुड़िया सिख देही दे दीखत पेंडे नूं सफलता साहित संपूर्ण करके बेदेही विच लीनता प्राप्त करदा है। इस इलाही केंद्र दी सिफत सलाह करदिआं हजूर फरमान करदे हन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 1362 उपर अंकत गुरु अर्जन साहिब जी दा फरमान है, जिथे सबे थाम नहीं तुद जेहा बद्दहु पुरख बिधाते तां तू सोहिआ।

इस शब्द की तुलना अंग्रेजी दे शब्द हिज एक्सीलेंसी नाल भी किया जाता है। उदाहरण वजो कनेडा दे गवर्नर जनरल नू हिज जां हर एक्सीलेंसी आख के संबोधन किया जाता है। प्यारे श्रोता जन, जब तुसी हरमंदर साहिब दे दर्शनां नू जांदे हो, तुसी नोट कीता होवेगा दरबार साहिब अंदर जाण लई इक पुल उपर दी लंघना पैंदा है। तुसी भावे इस बारे कदे विचारिया ना होवे, पर इस पिछे इक वड्डा गुरमत भेद छुपिया होया है। इस्लामी अकीदे मुताबिक दोजक दे उपर इक एहो जिहा पुल है जो बहुत बरीक ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਧਾਰਨੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਕ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਲ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਭਾਵ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

सतगुरु अर्जन साहिब जी ने अपने सारे 43 साल जीवन अंदर एहो जिहे बहुत चखड़ चले हैं। असी अज अपने करोगी जीवन विचों ही उन्हां दे दर्शन करने हैं। हमेशा याद रखने की लोड़ है कि बाबा पृथ्वी चंद की विरोधता सतगुरु जी ने अपने निशाने तो कभी भी दूर ना ले जा सकी। गुरु जी ने बड़ी गंभीरता विखाई, रता पर भी मत्थे वट नहीं पाया। सतगुरु जी ने दुनिया के राक्षस बल के मुकाबले से परमात्मा का आसरा लिया।

श्रोता जन, अंग्रेजी की कहावत है टू एक्सेप्ट अर्थ ऑफ एज वी आर इज टू वैल्यू अर इम्परफेक्शन एज मच एज परफेक्शन। भाव अपनी कमालियत प्रवीणता जां सिद्धि दे नाल नाल अपनी कान भाव कमजोरी नूं कबूलना ही करते कादर दियां कदरां कीमतां दी सार लैणा आ।

सतगुरु की प्यारी साथ संग गरीब नवाज सच्चे पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब 1430 पन्नियां दी बाणी विच अनेकां जगां ते प्राणी नूं बार बार याद करवाया है। किसे जगह से कोई मिसाल दे के, किसे जगह से कोई मिसाल दे के भई तैनू परमेश्वर ना विसरे। कबीर जी ने भी आख्या है, सो दर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए। चंद विचारा करनी है, क्योंकि कईयां दे मन दा भुलेखा हुंदा। मैं प्यार हुंदिया हुंदिया रोज जपजी का पाठ करता, मैं केड़ा दर छड़िया। मैं हफ्ते बाद गुरुद्वारे जाना वा, मैं

0: जो प्रकरण थोड़ा जा सुने तुम अखीर से जकारिया की गूंज बच धरना साहब जी बावा खड़ी खड़ी बावा खड़िया करके एक बार प्रवानगी दे दियो कोई दुख आवे सुख आवे झोली अड्डा के गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दास ने करना सारे कृपा करो जी
1: बोले
0: प्यार भरिया नारा आया दास बोलेगा 300 साल नहीं कहना गुरु के नाम 300 साल

अंदर संतान ना होवे ता अरदासा करदा परमात्मा दे द्वार ते देही नू रोग लग जाए ता मुक्त होण वास्ते अरदास करदा। ते जे सतगुरु कहंदे हन घर दे अंदर कोई सोग होवे खुशियां लई अरदास करदा। पंज वड्डियां दातां ने संसार दियां, एक है प्राण साडे स्वास जिहड़े ने इह जे घट जाण इहनां नू कोई नहीं वधा सकदा, इन्हां दी रखिया केवल प्राण मीत परमात्मा अकाल पुरख ही कर सकदे। सतगुरां ने तां ही किहा कहिंदे इह पंजे दीआं पंजे दातां गुरुद्वार दे विच्चों मिलदियां ने, गुरु दर तों मिलदियां ने, परमात्मा दे घर तों मिलदियां ने। प्राणां दी रखिया करन वाला प्राणपति, दुध ते पुत्तर दी दात देण वाला, घर दे अंदर रोग ते सोग नूं मिटाउण वाला, ऐसे परमात्मा दे दर ते पुकार करिए। सतगुरु कहिंदे हन सभे दातां मिल जाणगियां। हर इंसान कहिंदा मेरे घर दे अंदर पुत्तर होवे धी होवे, हर एक इंसान चाहुंदा मेरे घर दे अंदर खाण पीण वालियां दातां होण, हर एक इंसान खुशियां विच खेडना चाहुंदा। ते महाराज कहिंदे जे ये चीज़ां लैनियां ने ते आ रब दे द्वार दे उपर झुक, ये सारे दियां सारे दातां पंजे दियां पंजे तेरी झोली विच पै जाणगियां। कहिड़ियां हन फरमान